0: तुमको वाफी
1: रिफा मियांसनुल्ला नूना तिम्यासन तिक्यां सहया आर मनाम्पियासियां न तेरे कड़े ते तंबोप शिक्या दिमनुना निफितुंड्रान आर जन मनुना निफितुंड्रान सान्या तिम्यास फत्मियात्से शकुर फामियासा अम्फापंसुना आर मियासा न्यापंदियां निफितुंड्रान मतेत क्या मायनों ने बात क्यान फरानिस नांगना आर निसन तक एंटीफा Faruan Malakas Miaramenga, Arsa Tikanum Kenyan Zan. Tisavakinandan Zan. Tisavakanis Lutian Zania. Fasan Mazava, Zan Tom Tataran Tifirenenti. Kademanoansov and Skeritaret. Simais Tateranan, Fanvana, Sinfanavoz and Tom Tifirenenti. Timur Zan. Sart Zan. Kanef tsikas tokonia mboa didia mizavatra tokony tanterahantsika ary tsika de manampy ary rehefa manampy a de tena manampy marina niteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatrany zao hitantsika zao
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy

0: तुमको वाफी
1: रेफा मिसी नि फितुराना चिजाकन फवोका चिमैची अमने नारन नि फिलारंबे जे चिंतुना बास फिलारंबे आरात सचापा नरो नि फवे चिनित नि फितुना नरो तिफ तुकुनियाल नि रिटन नि नंबर फुलतोना रावो निदिन संदाले बेन फवोका अमनाले नि मारते सा नेचने तुकुन फनिर टेटे नरो तम निसाई